0: दिया गया है। तुर्की और कतर के ताल्लुकात ने हकीकता एक गैर मामूली पेशरफ दिखाई है। हमारी मजमूई सालाना गैर मुल्की तजारत का हजम गुज़िश्ता 21 वर्षों में 53 गुना इजाफे के साथ गुज़िश्ता साल 1.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया है।
1: शाम के सदर अहमद अल-शरा ने शाम को अमरीका की दहशतगर्दी फहरिस्त से निकाले जाने का खैर मकदम किया है। अल-शरा ने अमरीका की जानब से शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकाले जाने का खैर मकदम किया। शामी अवाम को मुबारकबाद दी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और दमिश्क के हामी ममालिक का शुक्रिया अदा किया है। पीर के रोज़ जारी करदा एक बयान में अल-शरा ने कहा है कि मैं शामी अवाम को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शाम का नाम बाज़ाब्ता तौर पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैं अमरीकी सदर का और शाम और शामी अवाम का साथ देने वाले तमाम बरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा असद अल-शिबानी ने भी इस फैसले को शामी अवाम की लाई हुई तब्दीली का नतीजा करार दिया और कहा है कि ये फैसला नई शाम के बैनुल अक़वामी अमन और सलामती से मुतल्लिका अज़्म की अक्कासी करता है। अल-शिबानी ने एक्स से जारी करदा बयान में 47 साल बाद दहशतगर्द तंजीम की हैसियत खत्म किए जाने का हवाला देते हुए कहा है कि हम शामी अवाम को इस तारीखी संगे मील पर मुबारकबाद पेश करते हैं।
0: तुर्की ने शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से निकालने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम किया है। इस सिलसिले में तुर्की की वजारत खारजा की जानब से एक तहरीरी बयान जारी किया गया। बयान में अमरीकी इंतजामिया और कांग्रेस के मुस्बत रवैये को सराहा गया है, जबकि शामी हुकूमत और वहाँ के अवाम को उनके पुरअज़्म मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश की गई है। इस बात पर जोर देते हुए कि तुर्की तवील अरसे से इस इकदाम की हिमायत कर रहा था, बयान में कहा गया है कि इस फैसले से शाम की इक्तसादी बहाली और तामीर नौ की राह में हायल एक बहुत बड़ी रकावट दूर हो गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि यह पेशरफ बैन अल-अक़वामी बरादरी के साथ शाम के ताल्लुकात को मजबूत करेगी और मुल्क में मुस्तकिल इस्तेहकाम के अमल को तेज़ करेगी। इसके साथ ही आलमी बरादरी से खुशहाल शाम के हदफ की जानब अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की अपील भी की गई है।
1: इसराइल गजा पर मुसल्लत करदा नसल कुशी जंग में 21,500 से जायद फलस्तीनी बच्चों को कत्ल और गजा में 1,244 मसाजद को शहीद कर चुका है। फलस्तीन हुकूमत के मीडिया दफ्तर के मुताबिक इसराइल अक्टूबर 2023 में शुरू करदा नसल कुशी जंग में 21,500 से जायद फलस्तीनी बच्चों को कत्ल कर चुका और गजा की 1,275 मसाजद में से 1,244 को शहीद कर चुका है। दफ्तर ने कहा है कि इसराइली अफवाज ने गजा में नसल कुशी के दौरान शहरियों, घरों और इबादतगाहों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया और 1,077 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दिया है। दफ्तर ने शहरियों, बच्चों और मजहबी मकामात को निशाना बनाए जाने की मजम्मत की और बैनुल अक़वामी सालिसों से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों को रुकवाने और मुआहिदे पर मुकम्मल तौर पर अमल करवाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। यह बयान इसराइल की जानब से इलाके पर हमलों में इजाफे की नई धमकियों के बाद जारी किया गया है।
0: फिलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के हमलों में जनवरी से जुलाई के अरसे के दौरान गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 63% इजाफा हुआ है। फिलिस्तीन के मुहासरा दीवार आबादकारी के खिलाफ मज़ाहमत के कमीशन ने कहा है कि जनवरी तक जुलाई के 7 महीनों के दौरान गैर कानूनी आबादकारों के 4,113 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में यह तादाद 2,524 थी। कमीशन ने कहा है कि हमलों में इजाफा खासतौर पर मवेशी बानी के लिए कायम किए गए गैर कानूनी आबादकारी मकामात की तादाद में इजाफा किए जाने, आबादकारों को मुसल्लह किए जाने और उनमें से बाज को सिक्योरिटी ढांचों में शामिल किए जाने के साथ हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली फौज की जानब से आबादकारों को फराहम की जाने वाली हिफाजत और हमला आवरों को दी गई खुली छुट्टी ने भी तशद्दुद को बढ़ाने में किरदार अदा किया है। कमीशन के मुताबिक आर्मी बरादरी की जानब से रोकथाम और जवाबदही के हवाले से नाकाफी इकदाम के बाइस आबादकारों के हमले महज इंफरादी वाकयात नहीं रहे, बल्कि मकबूजा इलाके में एक नई सूरत हाल पैदा करने और फलस्तीनों को उनके इलाकों से बेदखल होने पर मजबूर करने के लिए एक मुनज़म हथियार में तब्दील हो गए हैं। कमीशन ने कहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में 592 गैर कानूनी इसराइली बस्तियाँ और आबादकारी मराकज मौजूद हैं और इसराइल इलाके के तकरीबन 42% हिस्से पर गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा मशरिक़ी अल-क़ुद्स समेत मगरबी किनारे में आबाद गैर कानूनी इसराइली आबादकारों की तादाद जुलाई के अख्ताम तक तकरीबन 7,80,000 तक पहुँच गई थी। फलस्तीनी सरकारी ज़राए के मुताबिक गज़ा पर इसराइली जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजों और गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के हमलों में 1,182 फिलिस्तीनी हलाक, 12,000 से ज़ायद ज़ख्मी और तकरीबन 24,000 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है।
1: سعودی عرب اور فرانس نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ریاست کا درجہ دینے کی حمایت جاری رکھیں۔

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी तनाज़ात के दौरान कहा है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद तफ़सीलात दिए बगैर सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है। सदर डी जे ट्रंप इतवार के रोज़ वज़ीर ख़जाना स्कॉट डिसेंट ने कहा था कि अमरीका ईरान के खिलाफ इक्तसादी डी डे में दाखिल हो चुका है, जो उनके बकौल ट्रंप इंतजामिया की जानब से तेहरान की फौजी और जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करने के बाद हुआ है। डिसेंट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने ईरान की फौजी सलाहियतों को ख़त्म कर दिया, उसके तकरीबन 100% के करीब फौजी कारखानों को तबाह कर दिया और उसके जौहरी प्रोग्राम को दफन कर दिया है। ट्रंप ने जुम्मे के रोज़ कहा था कि जब तेहरान पर सख्त इक्तसादी इकदाम लागू किए जा रहे हैं तो वो अब भी ये समझते हैं कि ईरान वाशिंगटन के साथ दुरुस्त माहदा करने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो माहदा करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो दुरुस्त माहदा करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी बहरिया नहीं है, उनकी फ़िज़ाइया नहीं है और वो अपने फ़ौजियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, पुलिस को भी तनख्वाह नहीं दे रहे। उनकी महंगाई की शरह 350% है। ट्रंप ने यह इशारा भी दिया कि अमरीका ने अपने हुरमुस के आसपास के इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसमें अहम बहरी रास्ता और जनूबी ईरान का आसपास का ज़मीनी इलाका भी शामिल है।
2: अमरीका के वजीर दिफा पैट हिक्स ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ दोबारा हमले शुरू कर सकती है। दी हिल के मुताबिक हिक्स ने विस्कॉन्स सूबे में एक फौजी अड्डे के दौरे के बाद सहाफ़ियों से ईरान के मामले पर गुफ्तगू की। हिक्स ने कहा है कि अगर हमें किनेटिक हमले करने पड़े तो हम करेंगे, अगर ईरान अपने पास मौजूद फायदे ज्यादा इस्तेमाल करे या अमरीकी फौज से टक्कर लेता है तो हम वो करेंगे जो करना जरूरी है। हिक्स ने कहा है कि फिलहाल ईरान के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज इक्तसादी दबाव है और इसने दावा किया है कि अमरीका अब नए हुरमुस को कंट्रोल करता है। पैट हिक्स ने कहा है कि ईरान हुरमुस से कुछ भी नहीं गुजार रहा, ताहम हम गुजार सकते हैं। आलमी मईशत इस बात से वाकिफ है और इसीलिए उन्होंने आबनाए को कंट्रोल करने पर बड़ा दाव लगाया, मगर वो कामयाब नहीं हुए।
1: अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट डिसेंट ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत करने वाले ममालिक को ईरान जैसी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। डिसेंट ने खबरदार किया है कि ईरान की हिमायत जारी रखने वाला हर मुल्क तेहरान को आलमी मईशत से अलग थलग करने की कोशिशों का हिस्सा बन जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही आलमी रहनुमाओं से ईरान के साथ तिजारत रोकने का मुतालबा कर चुके हैं। बिसेंट ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया और कहा है कि इन पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और बहरी शोबों को निशाना बनाया गया है। वाज रहे कि ट्रंप इंतजामिया तनाज़े के खात्मे और आबनाए हुरमुस को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए एक माहदे पर मुज़ाकरात की खातिर तेहरान पर दबाव में इजाफा कर रही है।
2: चीन और उर्दन ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगमंदी को पायदार बनाया और आबनाए हुरमुस से मामूल की आमदोरफ्त को दोबारा बहाल किया जाए। चीन की खबर रसां एजेंसी शिन्हुआ की खबर के मुताबिक चीन और उर्दन ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि मुज़ाकरात और मुशावरत के जरिए एक ऐसे जामे हल की तलाश होनी चाहिए जो इलाकाई तनाव की बुनियादी वजूहत को ख़त्म कर सके। दोनों ममालिक ने मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ अलकुद्स में इसराइल के खतरनाक और कशीदगी बढ़ाने वाले इकदाम पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने पीर के रोज़ बीजिंग में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात की। उर्दन की शाही अदालत के एक्स अकाउंट से जारी करदा ऐलान के मुताबिक चीन के वजीर आजम ली चियांग ने भी बीजिंग में शाह अब्दुल्ला दोयम से मुलाकात की और अहम इक्तिसादी शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीकों

क्रम का शामिल करना जरूरी है, जिसे अमेरिकन हेरिटेज मैगजीन ने 1976 में एडिसन ऑफ लिब्रिकेशन का नाम दिया था, क्योंकि क्रम के मुजजाती चिप्स को इत्तेफाक से दरियाफ्त होने के दिन से अब तक अरबों बार इस्तेमाल किया जा चुका है। सन 1853 में मशहूर शेफ जॉर्ज क्रम, जो न्यूयॉर्क के शहर सराटोगा में मॉन्स लीक हाउस नामी रेस्तरां में काम करता था, उसने अपने गोश्त की डिश के साथ फ्रेंच फ्राइज पेश किए, जिसे एक अमीर गाहक ने नापसंद किया जो कि जहाजरानी और रेलवे के कारोबार में मसरूफ था। गाहक खाने की प्लेट बावर्ची खाने में वापस करता है और आलू को बारीक काट कर तलने के लिए कहता है। क्रम ने इस दरख्वास्त को रद्द नहीं किया और एक नई प्लेट तैयार की, लेकिन गाहक चाहता था कि फ्राइज उससे भी ज़्यादा पतले हों कि उन्हें कांटे से पकड़ा ना जाए। जॉर्ज क्रम, जो कि अमीर गाहक ने दूसरी बार प्लेट वापस भेजकर उसे अपनी तोहिन के तौर पर देखा, तो बहुत गुस्से में आया। इस बार पूरी महारत का मुजाहरा करते हुए नमक और मुख्तलिफ मसाले डालकर आलू के टुकड़े तकरीबन कागज़ के पतले से काट कर फ्राई करके गाहक को पेश किए। अमीर गाहक कॉर्नीलियस वंडरबेल्ट क्रम के पतले और खस्ता फ्राई से बहुत मुतासर हुआ और उसने अपने हल्के में सबको उनकी सिफारिश की। इस वाक़े के बाद हर कोई क्रम से वही फ्रेंच फ्राइज मांगने लगता है और आलू के चिप्स अचानक रेस्तरां का पसंदीदा खाना बन जाते हैं। अगरचे कुछ अरसे बाद घरेलू ख्वातीन की तरफ से इसी तरह के फ्रेंच फ्राइज तैयार किए जाने लगे, जॉर्ज क्रम और उनकी बहन केट विक्स, जिन्होंने 1860 में अपना एक रेस्तरां खोला था, उन्होंने आलू के चिप्स का मयार कायम किया और अपनी नई इजादात को पैक करके बेचना शुरू किया। न्यूयॉर्क सिटी में आलू के चिप्स जल्द ही लोगों के नाश्ते की पहली पसंद बन गए। दरअसना आलू के चिप्स, जो साराटोगा चिप्स के नाम से मशहूर है, उनको दूसरे बड़े रेस्तरानों और क्रूज़ बहरी जहाज़ों के बावर्ची खाने में दाखिल होने में ज़्यादा देर नहीं लगी और ये एक लजीज लज्जत के तौर पर अमरीका और यूरोप दोनों में फैलने लगी। जॉर्ज क्रम की हादसाती ईजाद आलू के चिप्स ने उन्हें 1889 में एक अखबार के जरिए अमेरिका का सबसे मशहूर शेफ करार देने के काबिल बना दिया। अमेरिकी खाने की तारीख में दिलचस्पी रखने वाले लोग क्रम के साथ साथ उसकी बहन केट विक्स को भी इस ईजाद के मेमारों में से एक समझते हैं। दर हकीकत बाद में शाया होने वाले कई मजामीन में मुख्तलिफ नामों को आलू के चिप्स के मूजिद का खिताब देने की कोशिश की गई। आलू के चिप्स, जिन्हें कई सालों से साराटोगा चिप्स कहा जाता था, तब से अब तक मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानब से लाखों पैकेजेस में तैयार किए जा चुके हैं और ख़ास तौर पर बच्चों और नौजवानों की तरफ से उसे मज़े से खाया जा रहा है। तमाम आज आलू के चिप्स जिनमें ज़्यादा चिकनाई और नमक होता है, इसके हवाले से बाज़ सख्त कवानीन तकरीबन हर मुल्क के फूड रेगुलेशंस में दाखिल हो चुके हैं। आलू के चिप्स, जिनका अब हर कोई मानता है कि ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे और कल्बी अमराज का बायस बनता है, अलबत्ता इनका जायका हर किसी को भाता है, बशर्ते कि इनका मुनासिब और माकूल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।